0: तुमको लाश तुमको वावी
1: ते मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोलोजी क्या बोलूँ ने मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोनॉमिक फारू जानवे मानो फेरुवना जान जो के इतने दे चारी आरुवना फुट निजू फा आताकुज आजा उन रो सही लांजा इकोनॉमिक सही आफाना मापनरुस न्यूल्ला मंदितना फालंजा फापुआरे आफाना यंचु मेचर का फावे निफिशीना फालंजा फापुआरे ते चफानेरेना न्यूल्ला यारु फा फानापीना न्यूल आमनी फिल्टेनन्या अंदावनान्फ

0: तुमको वाफी
1: फिल विप वार्चा वो शार्या वेती वुचिन वुपेन दायतुन फिवेलुमनाय चम निबुआना ते तो मुन्तान दंग मिवार्चों वो शार्तुन मिवार्चों जोक चुवुपेन दायाएं दस्मांग में सिंग शाकी दफ्तिया वन मुफ़ाज़ा का ननाय जान मतुंग अंग्रेज़ का राजा निसांगे के नंग तो बिली हम गराब दावलिया बकने संजय जान दाते नंबी शेफ़े ने मिशन ननाय अंगत वलंग नाय शक्ति या इज़ाज़ान है तो तुम वाज़न तो बिली तन नरीव हम फार्च अब दावल नाय अंगालं तुम कचनाय तूरी दस्यावजन फनकान ले शिकारा से तान फजकान ले यू द आविद नाइजन गरा बराए को कोई तूरी तेलो रिव फमरुता ना इंतुम तेल तन कमिशताऊं शताऊं द सिलाफ नाइ द नज़ेस नाइ डिमांड्सातु जे डिमांड्सातुं पुत अंबुले सिलाफ शक्तिया उन तो बिले मरुता ना इना सीशी द उलों तना ये तो सिविदेनी शक्ति शम्मा ना फ्तुर निया बुल अंदे मांगन जुर्नि� da voteza ny bokan-jano lan arety andra sisy aminay tiany agnaty volagninay zany kriza sisy atokana ndre raiky ay da sy mahazo mivelagna ka da agnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholo gnagny aby na nkomine aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay aminjay aba mizaly ay tony tena mizaly da nifafatesana ny sisy aminay tony kainy da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizada ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magno firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjaky ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoaza ny faranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da hoarasagna ny saky ny faranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay avako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: आज तुमको भाभी
1: फ्रॉम से फाला हमको मनु का ना तुकन वे अथो मार पेम सारा सारा जान बे रंग ते मिला तो बेचा कर लेती हो ते बा मिसी सके तो कठान जान ले रान बची चाले ले फावो ना ते वे अंधुआ फाना रूफानी संबुला ना दिस अच्छा बनी यो मचेरे अंको आ रावोर सो मिस पोतोरे रितु कुंबा पोतोरे जाम मजाका जीर मार मार मसापचा पना ते वोट सहयात है ना चांग मिस ते अब चालो तो सेवा सेनो फाउला ना ये तक कुंबा आरुष मंचिक
2: आ रनाम को मनुको ना सो निफाउला ना वे नेतमी फंडे काम से दे वे नेतमी फामरुना ना फुट सफ़ता सा वे माकास का ने रान जो चले सका पारास ने चीरो चोट सन आय आ रा वो तो ज़रा माकास का ने चीरो जो दे सेटे ने ना सिमिसे मिला अच्छा रान निपोटो ने ने उल्लंघन को जान मातेत क्या चमायन क्या ने सावचा इलान ने ने पंजी बस वन ने इन्हों मुझे येर नारा चा ऐसे तम चिक ते यो अम सेजन मिला वे अच्छा राना यान को जान
3: चिता कुत्ते जाने वाले ने वापस आना आर्मिस के वाले तो एक चांद रोमिंस चितुक ने अंदर अंदर वाला जान ने मिला सुलोन अंतिवन सिरा मामा ये फाचा दे फाचा नाइन डेज़ अंबा फ्लाइज़ नंबर सही सिर तेरे स्टास तेरे वा यंजने देवान फिटन सिर चमिएना तो सं फानाचारा निकाल तो ओपे सही चाले वाचारा ने अम पंजीव
4: मोल्टीरे ने ना आप पीटीपी ना वगैरह फोगला ना राइस ना फानाचारा ना तुतुलियानो ना सोफोलोंडी नंबर ची मनाने नी पेटर कुरुता ना गंती लासा रिचा राम के मनारक सानी फिनोसिया ना गमन चिरा बा फिनोसिया ना पीपे कुपु ये ते ना रियन मिचनर ने पोर्टों पियम ले रे से का सिक्योरिटी वो चन मुतारी वे नो ते माइस ने पियनी ना वे ये रे से का ट्यूओ जो से बेतु चेक चेक नो वे से कुनुला ना नी अम सो वे चितुं चमापतुंगन राम मित्रे से का फसिंबान
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.